0: 볼피다.
1: 진도블라, 현아가 세나베.
2: 러셀, 되다. 예고 되러. 下雨给 金色科追了这都会切不着 顶着很这切不着
1: 切了得死的 刚才下雨给我切切 那么久以内电不起来都 那呀 其实我最重下科追了这马略名的 了这先大主意思给 一直马略不都登给意思给 你也得呢 先不大接下 接着 既然给下雨我最了这大最起初呢
2: 용아, 전두유는 다섯 시를 주주리. 이내 윤형 도움에 서서다 주르바.
3: 어머니.
4: 용구유, 용구유, 다 칼라지 있어봐.
0: 야, 대쇼다. 저디, 망소 아. 네 자랑, 내가 잘 안 가면 나를 대지 니에서야고 겨 빨라라 칼라심부터 제 서준이 쓰여야고 싶어
4: 이제 난 가면 거
0: 빨라 암라 응 나 대여 야디 키나니라 나 부규바 이제 당야디 승다제 차빈 수가 용피 키나게 나 레몬슈 수자 니에시엔 니피 이내디 니에북삼 수자 키나게 나 진주나양지 와유 ये रान लेगो सुजुआदी रान खसिप छल मगाप छिमे रान लेग द माछेन समकी किसे रान नम सुता ने छवा छिबिन लेगो सु मसुल केबा करियो रे ये रान सेयुदा नने केस थाग यी सामने दाओ माजी
4: आ सेदा जीस जीस खलास दे मन सुति माछेन ने योंग दुए से छा सोनो नना जु खली छुदु छे छो रे ये या ता खलास सो
0: चुंगदे ने थाबदो किना निगे गुजि नंबर ने ने पी इने ता जंगा छेम छाजा
4: 俺爹听到俺爹他姐的用个识别，你也养家些哦，上不了大马车。
0: 他不都给他爷爷生出真正凶能没多？
4: 呀，伯母，
0: 阿姐，让你伯母路也管不了，你这瞧我多呀。俺爹说，他那等叫马车。

0: ट्रेस्टे लिसिंग दा रंगन नंदा योमर समझ
1: थाजन चेक रंगन जुसन जना के अंग थांगुल ने दे सम सम छु ट्रेस्टे
2: 夏雨
3: 铁铁让给普局，退居了杨千松啊。呀，无敌无敌花心锁，你的木兰爬到锁上去。卡车锁，别撒下，无敌给小雷车个亲自拉不着这个事业业界，比你的下啊。小莫给哈夸你，心不是多，呀呀呀，让前面去给我抓住你吧。